आवाज की दुनिया के संगीत प्रेमी दोस्तों, आज 23 अगस्त के मह कार्यक्रम में आपका आदर है, अभिनंदन है और सुखदेव जसवाल का सादर नमस्कार है। घर में अगर बच्चों की चहक हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसी महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन की कोशिश का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं, सुखदेव जसवाल। आज के कार्यक्रम में भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार, 20 साल की उम्र में जो बनी फीमेल सुपरस्टार विजयंती माला, उनके फिल्मों के गाने 2 घंटे के लिए। हम याद करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे सुभद्रा कुमारी चौहान को, भारत की बहुत ही मशहूर कवित्री, जिनकी कविता जो उन्होंने लिखी थी झांसी की रानी के बारे में हर स्कूल में पढ़ाई जाती है। कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा ऑनलाइन www.2RRR.org.au पे सुन सकते हैं। लिसन ऑनलाइन प्ले बटन अपने मोबाइल पर भी इसी तरह से, या फिर एक बिल्कुल फ्री मुफ्त ऐप कम्युनिटी रेडियो प्लस, कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप डाउनलोड करके अपने फेवरेट ऐप स्टोर से अपने मोबाइल के साथ आप जहां भी हो अपना मनपसंद कार्यक्रम महक सुन सकते हैं। यहां स्टूडियो में हमें संपर्क करने के लिए 02981622777 हमारा नंबर, 02981622777 हमारा नंबर। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं, mahakradio@yahoo.com, mahakradio mahakradio@yahoo.com। अपने सुझाव दीजिए और अपनी पसंद, अपनी फरमाइश भी भेज सकते हैं वहां, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश पूरी करने की और आपके सुझावों को कार्यक्रम में जोड़ने की।

विजयंती माला, जिनका जन्म हुआ 13 अगस्त 1936 को और उनका जन्म हुआ ट्रिप्लिकेन में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में। उनको बचपन से ही भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत और डांस की कोरियोग्राफी की शिक्षा भी दी गई। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में 1940 में, वो केवल 5 साल की थी या 4 साल की, पोप पायस, जैसे कि आजकल पोप लियो हैं, उस समय पोप पायस 12th होते थे, तो पोप पायस 12th के लिए उन्होंने भारतीय क्लासिकल डांस की परफॉर्मेंस की और आप समझ ही सकते हैं कितने सम्मानदायक बात थी ये कि पोप पायस के लिए वो भारतीय क्लासिकल डांस की परफॉर्मेंस दे रही हैं। और आगे चलकर वो एक पार्लियामेंटेरियन तो बनी ही, लेकिन इंडियन सिनेमा में उनका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने इंडियन क्लासिकल डांस के साथ साथ अपना जो अभिनय कला दिखाई वो बेमिसाल है। और जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, वो भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार बनी और वो भी 20 साल की उम्र में, और उनको बहुत सारे अवार्ड्स से सम्मानित किया गया और उनकी शुरुआत हुई हिंदी फिल्मी दुनिया में फिल्म बहार से 1951 में। लेकिन 1954 में उनकी आने वाली फिल्म नागिन से वो अत्यंत ही पॉपुलर हो गई और उस फिल्म के गाने भी एक से एक बढ़कर तो थे ही, लेकिन जो गाना उनके ऊपर फिल्माया गया था और उस गाने में एक बीन की आवाज़ भी थी, जिसकी बात हम फिर कभी करेंगे, लेकिन वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था और विजयंती माला तो छा गई लोगों के दिलों में, लोगों के मन में।

बहुत ही प्यारा रोल था उनका फिल्म नागिन में, लेकिन उसके बाद जो फिल्म आई और उसमें उन्होंने इतनी धूम मचाई कि सब उन्हीं का नाम ले रहे थे, फिल्म की दूसरी हीरोइन का कोई नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि दूसरी फिल्म की हीरोइन सुचित्रा सेन का जो रोल था उससे बराबर नहीं तो आगे था मेरा रोल और मैं सपोर्टिंग एक्ट्रेस नहीं थी। तो पेश है फिल्म देवदास का ये प्यारा गाना जो अत्यंत ही मशहूर हुआ और विजयंती माला जी भी अत्यंत ही मशहूर हुई फिल्म देवदास के बाद।

बहुत ही अत्यंत ही प्यारी फिल्म थी ये और अत्यंत ही प्यारा गाना है ये फिल्म देवदास का। और उसके बाद आई एक ऐसी फिल्म जिसने समाज को ही हिला के रख दिया। और इस सोशल फिल्म में हीरोइन थी वैजयंती माला जी, सुनील दत्त जी थे हीरो इस फिल्म के। और इसमें एक गाना था और ये गाना था महिलाओं के ऊपर। आज हम बात जो करते हैं महिला के स्थान की और यू नो विमेंस लिबरेशन की वगैरह वगैरह, ये देखिए उस समय 1950 के दशक में भारत ने फिल्म बनाई थी साधना, सुनील दत्त वैजयंती माला, और उसमें था ये गाना जिसने वो बातें कही जो बहुत ही कम लोग कहते हैं और बहुत ही कम धर्म भी हैं जो ये बातें सुनाते हैं, लेकिन फिल्म साधना में ये बात कही गई और ये एक फरमाशी गाना है।

0: 2:22 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का। कहीं जाइएगा नहीं, संदेशों के बाद फिर हाजिर होऊंगा। क्या विजयंती माला जी के फिल्मों के गाने लेकर महक 2RRR 88.5 FM पर, और महक नाम का MAHK नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके आप सदस्य बन सकते हैं और जान सकते हैं महक में कार्यक्रम में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और अपनी जो आप कंट्रीब्यूशन है वो भी डाल सकते हैं महक ग्रुप में। तो महक ग्रुप के सदस्य बनने के लिए बहुत ही आसान है, कार्यक्रम के समय फ़ोन कीजिए 02981622777 02981622777 और अपना नंबर दीजिए, हम आपका नंबर जोड़ देंगे और आप महक के सदस्य बन जाएंगे।
1: Where's a great place to socialise or hold a function?
2: The Bizzo Club Eastwood, with its ultra-friendly and personal atmosphere.
1: Get your friends together and enjoy exciting cocktails, cool wine and champers, fantastic spirit mixes, or a great choice of cold draft and craft beer with appetising bar snacks.
2: You can watch live sports on the big screen and place a bet on the TAB.
1: 2RRR sponsor, The Bizzo Club Eastwood. A great place to meet.
2: The Bizzo Club Eastwood on Hillview Road, close by West Parade.
3: Are you caring for a little one aged up to 3? Well, why not come along to Baby Bounce at the Yarn? This free weekly activity, proudly supported by Hunters Hill Council, is a wonderful opportunity for you and your little ones to enjoy stories, songs and rhymes together. These interactive and fun sessions help develop early literacy skills, encourage a love of books and reading, and create special moments for connection between you and your child. Join us Fridays from 11 a.m. to 12 noon at The Yarn, 64 Glazeville Road, Hunters Hill. Come along, join in the fun, and give your little one a wonderful introduction to the magic of the library. For more information, contact Hunters Hill Council on 9879 9400.
4: Did this grab your attention?
5: Would you like your business to get this sort of attention?
6: It's as easy as sponsoring 2RRR. We offer inexpensive packages to get your message heard through the variety of our great programming. Also, you support us, a non-for-profit organisation that gives voice to the local community. For more information, email office@2RRR.org.au or you can give us a call, 98162988. This is your local sound, 2RRR.
0: संदेश के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर 23 अगस्त के इस कार्यक्रम में, जिसमें आपके लिए पेश कर रहा हूँ विजयंती माला जी की फिल्मों के गाने, और कुछ आपकी पसंद के, आपकी फरमाइश के, और कुछ मेरी पसंद के। और अगला गाना जो है वो विजयंती माला जी की एक अत्यंत ही पॉपुलर फिल्म से है, और ये फिल्म थी नया दौर, दिलीप कुमार साहब के साथ, और ये एक जिसे कहते हैं आइकॉनिक और एक हिस्ट्री चेंजिंग फिल्म थी हिंदी फिल्मों में। इसमें दिखाया गया था कि पुरानी जो रवायतें हैं, पुरानी बातें हैं, पुराने तरीके हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं और नए तरीके आ रहे हैं। वो ज़माना था टांगे का, जब घोड़ा गाड़ी होती थी और लोग स्टेशन से घर, घर से बाज़ार वगैरह टांगे पर ही जाते थे, और फिर आई मोटर गाड़ी, और मोटर गाड़ी ने एक तरह से चैलेंज किया टांगे को कि तुम पुराने हो गए हो, सड़क से हट जाओ, अब हमारी बारी है। और यही है बेस इस फिल्म की कहानी का। क्या होता है ये तो आप फिल्म देख के ही जानेंगे, लेकिन विजयंती माला और दिलीप कुमार जी पर फिल्माया गया ये गाना मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार, बहुत ही प्यारा गाना है, और ये एक फरमाइशी गाना है, और इसकी फरमाइश की है सुधा ने। पेश है आपके लिए फिल्म नया दौर।

Community Broadcasting Association of Australia. हर एथनिक प्रोग्राम को जैसे कि आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महक है और दूसरे एथनिक कार्यक्रम हैं उनको सपोर्ट करता है और हम कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया CBAA के बहुत ही बहुत धन्यवाद करते हैं उनको हमारे कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए ताकि ये रेडियो पर आ सके और आपका मनोरंजन कर सके. Feel the magic of Disney's The Lion King, now showing at Sydney's Capitol Theatre. Experience the world's number one musical as this award-winning production brings breathtaking visuals, unforgettable music, and spectacular performances to stage. Get your ticket now and don't miss your chance to witness one of the world's most beloved musicals. Plan your experience and see what else Sydney has in store at sydney.com. Aap sun rahe hain Mahak 2RRR 88.5 FM par. Aaj 23 August ke Mahak karyakram mein Vijayanti Mala ji ki filmon ke gaane. Aur aapko yaad dila dun ke Ride Indian Association जो है राइड इंडियन एसोसिएशन पेश कर रही है सुहाना सफ़र सीज़न 2 बॉलीवुड कॉन्सर्ट और ये हो रहा है 27 अगस्त को वीरवार को बृहस्पतिवार को 7 बजे शाम और ये हो रहा है नॉर्थ राइड स्कूल ऑफ आर्ट्स में कम्युनिटी सेंटर 201 कॉक्सिस रोड नॉर्थ राइड न्यू साउथ वेल्स और इसके बारे में कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप केदार को फ़ोन कर सकते हैं 052-401-956 पे और इसके हमारे पास आज 4 टिकट हैं देने के लिए आपको और बहुत ही आसान है आपको केवल फ़ोन करना है 02-981-6-2777 पे 02-981-6-2777 पे और जो पहले 4 फ़ोन करने वाले होंगे उनको एक एक टिकट मिलेगा सुहाना सफ़र सीज़न 2 27 अगस्त थर्सडे बृहस्पतिवार शाम 7 बजे नॉर्थ राइड स्कूल ऑफ आर्ट्स कम्युनिटी सेंटर 201 कॉक्सिस रोड नॉर्थ राइड पर जो हो रहा है उसके तो बहुत ही आसान है 4 टिकट हैं हमारे पास देने के लिए और आपको फ़ोन करना है 02-981-6-2777 पे 02-981-6-2777 पे और पहले 4 फ़ोन करने वालों को मिलेगा एक एक टिकट और अगला गाना जो है वो फिल्म गंगा जमुना का है और ये भी एक फरमाइशी गाना है दिलीप कुमार विजयंती माला जी की अत्यंत ही सफल फिल्म और इसमें उन्होंने एक गांव की गोरी का रोल किया था और बहुत ही प्यारा रोल किया था और बहुत ही ये प्रचलित हुआ था गाना फरमाइशी गाना ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का भाला

आप सुन रहे हैं महक टू ट्रिपल आर 88.5 एफएम पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पिछले सप्ताह समाचार आया कि बीबीसी हिंदी में ये समाचार आया 21 अगस्त को 1984 के दंगों में सिखों के विरुद्ध अत्याचारों में आरोपी सज्जन कुमार उम्र कैद काट रहे थे जेल में। बृहस्पतिवार को उन्हें बेहोशी की हालत में सफदरजंग अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। वो 84 वर्ष के थे। और आपको बता दूं कि कुछ और समाचार जो हैं वो मैं आपको इस गाने के बाद दूंगा। और ये गाना जो है ये विजयंती माला जी की बहुत ही एक प्यारी फिल्म थी और बहुत ही एक प्रचलित होने वाली फिल्म थी। फिल्म का नाम था मधुमती। और फिल्म मधुमती का ये गाना इसलिए भी बहुत पॉपुलर है कि इसका संगीत जो है वो भी एक बहुत ही अत्यंत ही संगीतमय तरीके से दिया गया है। तो पीछे पेश है आपके लिए चढ़ गए ओ पापी बिछुआ, और इसको पसंद किया है माही ने। और इसे सुनते हुए आप भी अपनी पसंद हम तक पहुंचा सकते हैं 02-9816-2777 पे। और जैसा मैंने बताया हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है महक MAHAK, इसकी सदस्य बनने से आपको महक में क्या हो रहा है और महक में क्या होना चाहिए, आपकी पसंद और आपके सुझाव आप दे सकते हैं। और महक का सदस्य बनने के लिए बहुत ही आसान है, फ़ोन कीजिए 02-9816-2777 पे, 02-9816-2777 पे अपना नंबर दीजिए, हम आपको जोड़ देंगे महक व्हाट्सएप ग्रुप के साथ और आप अपने अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस ग्रुप में। और राइड इंडियन जो एसोसिएशन है जैसे केदार प्रमोट करते हैं और चलाते हैं, उसकी कार्यक्रम जो हो रहा है सुहाना सफ़र, और सुहाना सफ़र जो है बहुत ही प्यारा ये कार्यक्रम है 27 अगस्त बृहस्पतिवार को शाम 7 बजे कॉक्सिस रोड नॉर्थ राइड स्कूल ऑफ आर्ट्स कम्युनिटी सेंटर में। इसकी 4 टिकटें हैं हमारे पास जिसमें से अब केवल 3 बची हैं। तो आप अगर जाना चाहते हैं इस कार्यक्रम को देखने तो बहुत ही आसान है, फ़ोन कीजिए 02-9816-2777 02-9816-2777 और पहले 3 फ़ोन करने वालों को एक एक टिकट जीतने का मौका है।

नवभारत टाइम्स में समाचार आया कि शुक्रवार को पिछले हफ्ते पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर पहुंचे राहुल गांधी ओपोजिशन के लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा में साहिल लाचव नाम के व्यक्ति की मदद के लिए। 20 जुलाई के पुलिस कार्रवाई में जंतर मंतर पर साहिल पैलेट कम गन से निकले छर्रों से घायल हुआ था। उसकी दाई आंख में 3 पैलेट लगने से आंख की रोशनी चली गई। पूरे शरीर में 200 पैलेट्स अभी भी लगे हुए हैं जिनको मेडिकली तौर पर निकाला नहीं जा सका। वो FIR कराना चाहता था लेकिन पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी। और राहुल गांधी जो है वो पहुंचे उसकी मदद के लिए FIR कराने के लिए। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी और कुछ कांग्रेस नेता और भी पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने 20 जुलाई कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए FIR ना दर्ज करने का तर्क दिया। राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि पुलिस कह रही है कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि FIR दर्ज ना किया जाए। अंत में पुलिस को FIR दर्ज करना पड़ा। और बात बताऊं आपको जेन जी के आंदोलन की, 20 जुलाई को जो सफल प्रदर्शन उन्होंने किया जंतर मंतर पर जाति आधारित आरक्षण के विरुद्ध, अब वो दोबारा जंतर मंतर पर 21 अगस्त से प्रदर्शन पर बैठे हैं। बिहार में JPSSC और JSSC के विरुद्ध सफल प्रदर्शन हुए, आपको मैंने पिछले सप्ताह बताया था। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में शुरू हुई 20 अगस्त को जेन जी कनेक्ट साइकिल यात्रा, जो साइकिलों पर निकले हैं युवा दूसरे युवा को कनेक्ट करने और जेन जी को समझाने के लिए कि वो सवालों जो युवा कैसे एक साथ जुड़े हैं और अपनी अपनी परेशानियों को सबके सामने ला सकें। उनकी मांग ये है कि सरकारी नौकरियों की पूर्ति के लिए कैलेंडर हो, यानी एक निर्धारित कार्यक्रम हो। पेपर लीक प्रदर्शनों में गिरफ्तार हुए छात्रों को रिहा किया जाए। युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक 14-पॉइंट चेकलिस्ट जारी की है हॉस्टल्स के नाम पर, के काम पर नज़र रखने के लिए, क्योंकि हॉस्टल्स में युवाओं का कहना है बहुत धांधलीबाजी हो रही है। जैसा मैंने पिछले सप्ताह कहा था, फिर दोहराता हूँ, इस बार देश का युवा जाग गया है, अपना हक मांग रहा है। सुनने वालों, जाग जाओ, झूठ फैलाना बंद करो। ये हमारी मांग है, हमारी विचार है, और आपकी पसंद, आपके विचार हम पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप हमें बता सकते हैं फ़ोन करके 02-9816-2777, 02-9816-2777 पे आप क्या बात रखना चाहते हैं। अगला गाना जो है वो भी एक फरमाइशी गाना है और फरमाइश की है लक्ष्मी ने, और ये गाना है फिल्म आशा का, और ये विजयंती माला जी की एक और अत्यंत ही पॉपुलर और प्रसिद्ध और सफल फिल्मों में से एक है।

आप सुन रहे हैं महक TRRR 88.5 FM पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल, और ये कार्यक्रम आता है TRRR 88.5 FM पर। और यहाँ स्टूडियो में हमारा नंबर है 02-9816-2777, 02-9816-2777। और अगला गाना जो है वो है देव आनंद और विजयंती माला जी की एक फिल्म जो चली काफ़ी थी, लेकिन उतनी हिट नहीं हुई थी जितनी विजयंती माला जी की फिल्में अक्सर हिट होती थी। और इसमें दोनों देव आनंद और विजयंती माला जी का कोई कसूर नहीं था। जनता है उनको जो अच्छा लगता है वो देखते हैं, और जो नहीं अच्छा लगता वो नहीं देखते। और शायद इसीलिए कुछ अच्छी फिल्में जो हैं वो भी हिट नहीं होती, और जो फिल्में हिट होती हैं वो शायद अच्छी ही होती हैं क्योंकि जनता उन्हें पसंद करती है। तो पेश है आपके लिए अगला गाना, जो एक और फरमाइशी गाना है, और ये फरमाइशी गाना जो है ये है राजेंद्र कुमार जी की एक फिल्म थी आस का पंछी, और ये आस का पंछी भी अत्यंत ही पॉपुलर हुई थी। विजयंती माला जी थी उसकी हीरोइन, और जैसे मैंने कहा कि राइट इंडियन एसोसिएशन जिसे केदार चलाते हैं उसकी अब हमारे पास केवल 2 टिकटें बची हैं, और अगले 2 फ़ोन करने वालों को जो पहले फ़ोन करेंगे ये टिकटें मिल सकती हैं। बहुत ही आसान है, 02-9816-2777 हमारा नंबर यहाँ स्टूडियो में।

0: दोपहर के 3 बजे हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का। कहीं जाइएगा नहीं, संदेशों के बाद हाजिर होऊंगा फिर वैजयंती माला जी की फिल्मों के गाने लेकर महक 2RRR 88.5 FM पर। और अपनी पसंद अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाना चाहें तो अब बहुत ही अच्छा समय है फ़ोन करने के लिए। 02 9816 2777 हमारा नंबर, 02 9816 2777 हमारा नंबर। और हमारे पास अभी भी एक टिकट है जो राइड इंडियन एसोसिएशन है सुहाना सफ़र कार्यक्रम कर रही है उसके लिए, तो आप फ़ोन कर सकते हैं 02 9816 2777 पर।
1: Are you or a loved one in need of an aged care facility? The St Elizabeth Aged Care Facility and Nursing Home is situated in Dean Park, just 40 minutes drive from Sydney CBD on a beautifully landscaped and leafy 3.9 hectares. There are group therapy sessions with qualified staff, spiritual counselling, outings and celebrations for birthdays and Catholic holidays. For more information, please contact the St Elizabeth Aged Care Facility and Nursing Home at 1 Simons Road, Dean Park, 2761, or telephone 8818 8500. The St Elizabeth Aged Care Facility is a proud sponsor of 2RRR.
2: Reading Writing Hotline is there to help adults who have difficulties with reading, writing or spelling. Their number is 1300 655 06.
3: 1300 655 06.
2: Go on, take the plunge.
4: Howdy. I tell you, there's nothing quite like a late night dose of the blues. That's blues music, of course. Well, 2RRR has got your evening blues covered. With Smokestack Lightning on Monday and Thursday, 10 to midnight, and Rhythm, Blues, and Bacon Fat on Tuesday, Wednesday, and Friday nights from 11. Keep the dial on 88.5 FM or stream via the web on 2RRR.org.au and stay bluesy.
5: Part of Bendigo Bank, Community Bank Homebush and North Ryde invest in community outcomes. Radio 2RRR is dedicated to working with local youth through the broadcasting medium, as well as to assist adults who are on their rehabilitation journey. Without the significant support from the Community Bank Homebush and North Ryde, this initiative simply would not be possible.
6: Support the bank that supports your community. Call, email or visit station sponsor Community Bank Homebush and North Ryde, part of Bendigo Bank, the better big bank.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक 2RRR 88.5 FM पर अपने मनपसंद कार्यक्रम महक में। झारखंड के JSSC, झारखंड सर्विसेज सिलेक्शन जो बोर्ड है, उसके काम पर प्रदर्शन को सोमवार 17 अगस्त को समाप्त कर दिया गया। अनशन पर बैठे छात्र देवेंद्रनाथ महतो ने JSSC द्वारा सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद ये अनशन तोड़ा। वो 2 जुलाई से अनशन पर थे। झारखंड सरकार के इस बड़े कदम का धन्यवाद किया सरकार को। उन्होंने कहा, मेरी कल्पना एक ऐसे शिक्षा तंत्र की है, यानी एजुकेशन सिस्टम की है, जहां पेपर लीक और धांधली की कोई जगह न हो। बहुत ही अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं कि भारत में पारदर्शिता कायम रहे और ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि लोगों को पता चलता रहे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन यहां महक में बहुत ही आसान है। 02 9816 2777 है हमारा नंबर यहाँ स्टूडियो में, और आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और जैसे मैंने कहा, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप महक का सदस्य बनना चाहें, बहुत ही आसान है। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए 02 9816 2777 02 9816277 अपना नंबर दीजिए और हम आपको इसमें शामिल कर लेंगे और आप अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं महक में, अपने विचार रख सकते हैं और अपनी फरमाइश दे सकते हैं। और ये अगला गाना भी एक फरमाइशी गाना है जिसको पसंद किया है रानी ने और फिल्म है अमरदीप देवानंद साहब और विजयंती माला जी की बेहतरीन फिल्म और पेश है ये गाना। माफ कीजिए कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को देखते हैं कैसे हटाया जा सकता है और ये गड़बड़ जल्दी ही आपके लिए हटा दूंगा, उम्मीद यही है। और

भारत में इतिहास में और ख़ास तौर से भारत के आज़ादी के इतिहास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसमें केवल क्रांतिकारियों का योगदान ही नहीं रहा है जिन्होंने लड़ाई की आगे आकर और भारत को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान है जो इतिहास के पन्नों में लिटरेचर में जिनका नाम आया है। ऐसी ही एक कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, एक ऐसी ही महिला हैं जो भारत के साहित्यिक इतिहास का एक स्तंभ है, और महिलाओं के इस बड़े योगदान में उनका भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है और राजनीतिक इतिहास में भी रहा है। 16 अगस्त 1904 सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ निहालपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में एक राजपूत परिवार में। प्रयागराज के क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। वहीं महादेवी वर्मा जो एक और भारत की महान कवित्री रही हैं उनसे सुभद्रा कुमारी चौहान की दोस्ती हुई। 16 वर्ष की आयु में ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से शादी हो गई उनकी। शादी के बाद वो जबलपुर में रहने लगी जो आजकल मध्य प्रदेश में है। 1921 में पति के साथ महात्मा गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से वो जुड़ गई। वो पहली महिला थी सत्याग्रही के तौर पर नागपुर में गिरफ्तार होने वाली। ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध करने के लिए उन्हें दो बार 1923 में और 1942 में जेल की सजा दी गई। साहित्य के इतिहास में उनका योगदान सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। और खड़ी बोली में वो लिखती थी जो सबको समझ आने वाली भाषा है, और सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम के अलावा बच्चों के लिए भी कविताएं लिखती थी। उनके सम्मान में इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक शिप, एक समुद्री जहाज का नाम रखा है ICGS सुभद्रा कुमारी चौहान। जबलपुर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर सुभद्रा कुमारी चौहान का लाइफ साइज स्टैचू लगाया गया है। इंडियन पोस्ट ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। गूगल ने 16 अगस्त 2021 को एक डूडल के साथ भारत में उनका सम्मान किया और सम्मान करते हुए लिखा, चौहान्स पोएट्री रिमेन्स अ स्टेपल इन मेनी इंडियन क्लासरूम्स एज अ सिंबल ऑफ हिस्टोरिक प्रोग्रेस एनकरेजिंग फ्यूचर जनरेशन्स टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड सेलिब्रेट द वर्ड्स दैट हैव शेप्ड द नेशंस हिस्ट्री। उनके कविता संग्रहों में शामिल हैं खिलौने वाला, मुकुल, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा, ये कदम्ब का पेड़, मेरा नया बचपन, बिखरे मोती, और उनकी सबसे मशहूर कविता संग्रह और कविता झांसी की रानी हिंगवाला। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रही वो नागपुर में, और उनका और असेंबली सेशन अटेंड कर रही थी वो, और असेंबली सेशन अटेंड करने के बाद जबलपुर लौट रही थी वो नागपुर से सड़क द्वारा, तो सियोनी के पास 15 फरवरी 1948 के दिन एक कार एक्सीडेंट में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का देहांत हो गया। उनकी झांसी की रानी पर कविता पढ़ाई जाती है ये भारत के हर स्कूल में, और उस कविता को सभी बहुत पसंद करते हैं। तो पेश है उसके कुछ बोल। सिंहासन हिल उठे राजवंश ने भ्रिकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंश ने भ्रिकुटी तानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी।
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में, ये वो तलवार पुरानी थी। बुंदेलों हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देश की आज़ादी की लड़ाई में जोश भरने और इतिहास की सेवा के लिए उनकी अनेकों कविताओं में ये मुख्य स्थान रखती है झांसी की रानी। जलियांवाला बाग में बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, राखी की चुनौती और विदा, ये थी कुछ बातें सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में। उम्मीद है आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा होगा। तो आइए चलें आगे बढ़ें वैजयंती माला जी के गानों के इस कार्यक्रम के को आगे बढ़ाएं। जागरण में 22 अगस्त को समाचार आया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 अगस्त से जाति आधारित आरक्षण के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ज्यादातर युवाओं को देखा गया है प्रदर्शन में। दिल्ली में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की क्योंकि उनके अनुसार प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन भारी भीड़ के आगे पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। प्रदर्शन के में करनी सेना जो के राजपूतों के हकों की लिए खड़ी रहती है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और अन्य संगठन शामिल हुए। अधिकतर प्रदर्शनकर्ताओं की मांग है कि आरक्षण का आधार जाति नहीं आर्थिक स्थिति होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं आप भी बता सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं महक 888.5 FM पर। तो आइए चलें वैजयंती माला जी के अगले गाने की ओर और अगला गाना है किशोर कुमार जी के साथ उनकी एक फिल्म आई थी रंगोली और इसका ये गाना अत्यंत ही पॉपुलर हुआ था। माफ कीजिए ये कुछ जो डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये डिस्टर्बेंस आपके लिए दूर कर दूँ और गाना आप आराम से पूरा सुन सकें।

पार्लियामेंट में एमपीस जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, देश के लिए कानून बनाते हैं। वो निष्पक्षता से इंडिपेंडेंटली कानून बनाएंगे, इसकी उम्मीद जनता करती है। लेकिन भारतीय संसद का हाल देखकर इसकी उम्मीद पर विश्वास डगमगा जाता है। मैं थोड़ा मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि यह सच है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक एफिडेविट के अनुसार आप भारत में एक एफिडेविट दाखिल कर सकते हैं अपनी जो बात है वो रखने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक एफिडेविट के अनुसार देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4000 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। जी हाँ, एमपीस और एमएलएस के विरुद्ध 4000 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 300 से अधिक सांसद और 14 मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। आपको बता दूं कि भारत में केवल 31 मुख्यमंत्री हैं, तो 31 में से 14 के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब क्या बताएं आपको, क्या हाल है भारत का। लेकिन आपको ये बता दूं कि 20 अगस्त को जनसत्ता समाचार पत्र में समाचार आया कि टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो अत्यंत ही लंबा चल रहा है, बहुत ही सालों से चल रहा है भारतीय टीवी पर, और बड़ा ही एक प्रचलित और बहुत ही पसंदीदा टीवी शो है सबका। तो टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शादी का एक गाना है, दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, बहुत ही पॉपुलर है। और इतना पॉपुलर है कि आज भी जो शादी ब्याह होती है तो ये गाना अक्सर बजता है और कई शादियों में सुना गया है।

ये गाना भी 2002 से शुरू हुए इस टीवी सीरियल की तरह आज भी पसंद किया जाता है और अक्सर शादियों में सुना जाता है।

और भारतीय टीवी पर शायद केबीसी कौन बनेगा करोड़पति से ज्यादा पॉपुलर कोई शो हो, तो गेम शो केबीसी पर सोमवार को बीते सप्ताह 4 कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो के मेडलिस्ट आए थे। उनमें पैरा ओलंपिक हैवीवेट पावर वेट लिफ्टर झंडू कुमार भी थे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बॉक्सर लवलीना बोरगेन थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता 75 किलोग्राम कैटेगरी में, और जुडोका अस्मिता दे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता पहली बार भारत के लिए, पैरा एथलीट शर्मिला धनकर बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ आपसे, पैरा एथलीट शर्मिला धनकर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता शॉट पुट में। सभी ने अपने बीते जीवन के बारे में बातें की। अचरज यह है कि सभी के सभी सामान्य या गरीब परिवारों से आते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करके उनसे उभर कर देश को सम्मान दिलाते हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं जय हिंद। और हम चलते हैं अगले गाने की ओर, और अगला गाना जो है वो बहुत ही एक क्या कहें ऐसा गाना है जो कि वैजयंती माला जी की सफलतम फिल्मों में से शायद एक गाना है, और ये उनकी फिल्म थी राज कपूर जी के साथ। और ये गाना, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कहते हैं कि ये गाना कुछ प्लान्ड नहीं था, लेकिन ये अनप्लान्ड गाना जो था इसने ऐसी धूम मचाई कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी जब ये कोई गाना सुनता है तो उनके मन में केवल वही कुछ आता है जो उस समय उन्होंने फिल्मी पर्दे पर देखा था फिल्म संगम में। तो पेश है आपके लिए वैजयंती माला और राज कपूर साहब की अत्यंत ही सफल फिल्म जिसमें उनके साथ थे राजेंद्र कुमार जी, बहुत ही प्यारी फिल्म थी ये, उसका ये बेहतरीन और सफल गाना मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया।

0: आप सुन रहे हैं महक 88.5 FM पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक जो आपके लिए पेश किया जा रहा है कि पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल। कार्यक्रम आपको पसंद आता हो अपने दोस्तों को जरूर बताइए। और अब बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे जो समाचार है उसकी। बीबीसी हिंदी में 20 अगस्त को यह समाचार आया। भारत में अमरीकी एम्बेसडर सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर के दौरा किया। जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ने तुरंत इस्लामाबाद में अमेरिकन शाजर डी अफेयर्स जो एक और एम्बेसडर के साथ का नाम है, तो भारत ने तुरंत इस्लामाबाद में अमेरिकन शाजर डी अफेयर्स को तलब किया, अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है, ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और कश्मीरी लोगों के अनुसार अपने अंतिम समाधान का इंतज़ार कर रहा है। जी हाँ, लेकिन अब मुश्किल है क्योंकि भारत ने जो आर्टिकल 370 हटाया है वो इस बात के खिलाफ ही जाता है और अब भारत का अटूट हिस्सा बन गया है जम्मू कश्मीर। और अटूट हिस्सा हैं आप हमारे इस कार्यक्रम के। और अब आपके लिए पेश हैं कुछ संदेश।
1: Hi, I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music 3 nights a week.
2: 2RRR sponsored the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
3: Hey there, are you aged between 10 and 14? Can you swim 50 metres of freestyle and breaststroke confidently? Well, if the answer is yes, then why not give water polo a try with the Ride Water Polo Club? You'll just need to pay the entry fee to Ride Aquatic Leisure Centre at 504 Victoria Road Ride. For more information, telephone Amy Jones on 0402 040 390.
4: We interrupt our program to bring you this important message.
5: If you love listening to 2RRR, you should join the community and become a member. 2RRR membership allows you to get involved in all aspects of broadcasting and supports 2RRR to stay on air. Download an application at 2RRR.org.au or phone us on 9816 2988 for more information. Let your voice be part of your local sound. 2RRR.
0: Feel the magic of Disney's The Lion King, now showing at Sydney's Capitol Theatre. Experience the world's number one musical as this award-winning production brings breathtaking visuals, unforgettable music, and spectacular performances to the stage. Get your ticket now and don't miss your chance to witness one of the world's most beloved musicals. Plan your experience and see what else Sydney has in store at sydney.com. आप सुन रहे हैं महक 88.5 FM पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक। कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के हम बहुत ही धन्यवाद दी हैं और उनको हम बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि CBAA हमारे जैसे कई एथनिक कार्यक्रम्स को सपोर्ट करता है और हम सपोर्ट करते हैं आपकी फरमाइश को। अगला गाना एक फरमाइशी गाना है, फिल्म है सूरज, विजयंती माला जी और उनके साथ थे राजेंद्र कुमार जी जो उस समय के एक हिट सुपर हिट हीरो थे जिनको जुबली कुमार भी कहा जाता है. तो ये फरमाइशी गाना सुनते हुए आप भी अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं 02 9816 2777 पर.

बहुत ही अत्यंत ही प्यारा गाना ये है फिल्म सूरज का। और वैसे तो फिल्म सूरज के और भी गाने थे जो बहुत ही पॉपुलर हुए थे, वो गाने फिर कभी आपके लिए पेश करूंगा मैं। और अब बात करते हैं बीबीसी हिंदी 20 अगस्त के समाचार की। राजनीति से भरे आज के माहौल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ भेदभाव और जातिवाद के नाम पर राजनीति, गरीब अमीर के आधार पर सरकारी फैसलों के बीच जब आम जनता के बीच इंसानियत देखने को मिलती है तो इंसानियत पर भरोसा फिर करने को दिल करता है। असम में आई हाल की बाढ़ में ये सामने आया। गुरुद्वारे और मस्जिद में बिना किसी भेदभाव के जब सभी ने शरण ली। शरणार्थियों से बातचीत में बीबीसी हिंदी को बताया गया कि हम आम लोग हैं, हम सब भाई भाई की तरह मिलकर रहते हैं समाज में और एक दूसरे की मदद करते हैं जब मौका आता है किसी मदद का। जो लोग राजनीति में हैं वो अपने फायदे के लिए धर्म और जाति के विवाद खड़े करते हैं अपने फायदे के लिए, और हम बिल्कुल भी अपने फायदे के लिए कोई विवाद नहीं खड़ा करते। हम केवल आपकी फरमाइश पेश करते हैं, जैसे कि ये अगला गाना जिसे पसंद किया है लक्ष्मी ने, फिल्म है साथी, और राजेंद्र कुमार और विजयंती माला जी की ये बहुत ही

Federation of International Hockey World Cup FIH World Cup के पूल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर कंपटीशन से बाहर कर दिया। भारत श्रीलंका की दो टेस्ट मैच सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। आज दूसरा टेस्ट है, श्रीलंका नए 4 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है। मैच कोलंबो में है, भारतीय टीम की स्पिरिट्स हाई हैं और इस मैच के चलते लगता है वो जीतेगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अब सभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस में नेशनल एंथम जनगण मन से पहले वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर दिया है। बहुत से लोग इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। शर्मिला टैगोर जी, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, शर्मिला टैगोर जी ने कहा है कि जो लोग एक भगवान को ही मानते हैं उनके लिए वंदे मातरम के दो स्टैंजर्स, दो पैराग्राफ्स के बाद के छंद गाने मुश्किल हैं। कंगना रनौत ने जवाब में कहा कि उन्हें, यानी शर्मिला टैगोर जी को, हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर निकलना होगा। मेरा विचार यह है कि क्या सरकार का वंदे मातरम को अनिवार्य बनाना इसके पीछे यही सोच नहीं है, वरना अच्छा भला नेशनल एंथम जनगण मन तो था ही, उसकी जगह या उससे पहले कुछ और करने के लिए क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये सब पॉलिटिक्स है और हम पॉलिटिक्स में ज़्यादा दखल नहीं देते, लेकिन फिल्मी दुनिया की बात ज़रूर कर लें। शाहरुख खान के घर, जो मन्नत के नाम से मशहूर है, उसमें 2 सांप देखे गए। सांप पकड़ने वाले विभाग को सूचित किया गया, कर्मचारी आए, लेकिन उन्हें एक ही सांप पकड़ने का मौका मिला, दूसरा कहीं भाग निकला। लेकिन आपकी फरमाइश, हमारे हाथ से भाग नहीं निकलती, क्योंकि अगला गाना शांति की पसंद का है और शांति ने पसंद किया है फिल्म दुनिया का ये बेहतरीन गाना, जिसकी आवाज़ें हैं किशोर जी और आशा भोसले जी की।

बातें हमारी जन्मभूमि की, जहां हम पैदा हुए, कुछ इधर की कुछ उधर की। सुरेश कुमार 51 साल के हैं, 2 PhD हैं उनके पास और 1 MBA है, लेकिन वो एक मेडिकल डॉक्टर का सपना देखते हैं अभी भी 51 साल की उम्र में। इस साल NEET नीट पास किया उन्होंने, नागपट्टनम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू कर दी है। सपनों की, कहते हैं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, 51 साल में भी डॉक्टर की पढ़ाई शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के का लाल किले का जो भाषण था, उसमें 3 बार भारत माता की जय और वंदे मातरम कहकर किया, अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ऊपर है जय हिंद, यानी भारत की विजय। भारत के डिफेंस फोर्सेस और जितने भी सिविल फोर्सेस हैं, पुलिस या दूसरे फोर्सेस, वो सब जय हिंद कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जय हिंद नहीं कहा लाल किले से। क्या ये हिंदू राष्ट्र की ओर एक और कदम है? केरल में एक जुड़वा भाइयों के जोड़े ने अपने बचपन की तमन्ना पूरी की जुड़वा बहनों से शादी करके। अखिल और निखिल ने मैगी और मारिया से शादी की और उन सबको गलत साबित कर दिया जो कहते थे कि जुड़वा बहनों से शादी का सपना सपना ही रहेगा, इसे छोड़ दो। दिल्ली के पास मूर्थल जगह है जो अपने ढाबों के लिए मशहूर है, वहाँ के रेशम ढाबे की आजकल चर्चा हो रही है क्योंकि वहाँ अब एक रोबोट खाना देता है, लेकिन हम यहाँ रोबोट को नहीं लगाते गाने जो आपके फरमाइशी गाने हैं उसके लिए। और राज की पसंद है ये अगला गाना, और ये है

अब बातें हमारी कर्म भूमि की। 35 साल पहले एडी माबो ने ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल लैंड राइट्स के लिए सफल लड़ाई लड़ी। ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट ने कथित टेरा नालियस के कानूनी तर्क को गलत करार दिया था उनके इस मुकदमे के फैसले में, जिसके अनुसार अब अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया में जब आए थे और ऑस्ट्रेलिया को बसाया था उनके मुताबिक, तो यहाँ कोई इंसान नहीं रहता था। इसको गलत साबित किया। 1992 के हाईकोर्ट के इस फैसले में ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज का कानूनी हक कायम किया गया नेटिव टाइटल के तौर पर। एडी माबो की बेटी केल माबो ने पिछले सप्ताह म्यूजियम ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट में बीते सप्ताह इसको याद किया। गैम्बलिंग एड्स टीवी पर, रेडियो पर आती हैं उनके खिलाफ, और गैम्बलिंग एड्स के खिलाफ कुछ सुधारों के लिए ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने कानून पास किया इस बीते सप्ताह। रोबलॉक्स, जो बच्चे खूब मजे से खेलते हैं, ऑनलाइन गेम है जिसे संसार भर में 100 मिलियन बच्चे और ऑस्ट्रेलिया में 1.5 मिलियन बच्चे खेलते हैं, और उसमें सुधारने के लिए सरकार ने रोबलॉक्स के लिए जिम्मेवार कंपनी को आदेश दिए हैं कि खेल के द्वारा व्यस्क यानी एडल्ट्स बच्चों से संपर्क न करें। इसके लिए किए गए बदलावों की जांच एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर करेगा। और टोबैको टैक्स समाचारों में है, और टोबैको टैक्स इतना ज़्यादा समाचारों में है कि इतना बढ़ गया है कि अब 80% हो गया है। न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर क्रिस मिंस और वन नेशन चाहते हैं कि एक्साइज को कम किया जाए ताकि ब्लैक मार्केट जो है वो कम हो सके। और हमारी कर्म भूमि की एक खास खबर है कि अगले सप्ताह 30 अगस्त को सिडनी मैराथन हो रहा है 2026 का, एक यादगार मैराथन के रूप में आयोजित किया जा रहा है। 42.2 किलोमीटर का यह मैराथन पूरा करने पर भाग लेने वालों को एक यादगार मेडल भी दिया जाएगा। मेडल पर मैराथन के रास्ते में पड़ने वाली महत्वपूर्ण जगहें खुदी होंगी, लेकिन जो सामने आया है वो थोड़ा परेशान करने वाली बात है, क्योंकि जो जगहें वहाँ लिखी गई हैं उनमें कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर एलियंस स्टेडियम, मोर पार्क, पार्क रोड, सेंटेनियल पार्क की जगह एलियंस अरीना म्यूनिक जर्मनी दिखाया गया है, जो केवल 16,000 किलोमीटर का हेरफेर है। लेकिन हमारे यहाँ हेरफेर कोई नहीं है। कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने को आ गया है, आपसे इजाज़त लेने का समय आ गया है, और महक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और एक दूसरे का ध्यान रखें। अगले सप्ताह जिन कलाकारों के जन्मदिन हैं उनमें हैं सारा बानो और गीतकार शैलेंद्र जी, मशहूर लोगों में मदर टेरेसा जी, शिवराम राजगुरु हमारे आज़ादी की लड़ाई के बहुत जाने माने हस्ती, ध्यानचंद जी क्रिकेट की जानी मानी हस्ती, और रेसलिंग में विनेश फोगट। आपसे इजाज़त लेते हुए आपको आपके लिए जो अंतिम गाना छोड़े जा रहा हूँ वो है फिल्म ज्वेल थीफ का। इसको सुनते हुए मुझे आंखें दीजिए। नमस्कार।